ने की फल फल लगू लेकिन फिर गपी कौन गुड़म गुड़म लगने की फल फल लगू लेकिन।